सुप्रभात। एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह डाल्टनगंज केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की नवी तिथि, तदनुसार 31 अगस्त सन 2026। अभी हमारे स्टूडियो के घड़े में सुबह के 5:58 हुए हैं। आप सबों का आज का दिन मंगलमय हो, इसी कामनाओं के साथ आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस दो दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: प्रधानमंत्री आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिमालीफ आदिलबेक अलेशोविच ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए पारंपरिक किर्गिज नृत्य का आयोजन भी किया गया। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिजिस्तान की यात्रा पर हैं। आशा है कि शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने को उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अब भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में एक और बाढ़ के कारण सस्पेंशन पुल बह गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। करीब 50 लापता भारतीय नागरिकों से संपर्क हो गया है, लेकिन 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका में दक्षिण कैरोलिना के एशविले में G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगे। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के ठिकाने का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सुरक्षा बलों ने बेलपोचा गोमपाड़ के घने जंगल में छिपाकर रखे गए विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। ये संयुक्त अभियान सुकमा जिला बल, जिला रिजर्व गार्ड DRG और बस्तर फाइटर्स ने चलाया। ये कार्रवाई हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कैडरों से मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। भारत के अभय सिंह ने तुआंकू महरिज स्क्वाश ट्रॉफी जीत ली है। मलेशिया के सेरेम्बन में अभय ने PSA चैलेंजर टूर 15 इवेंट के फाइनल में हांगकांग के हेनरी लेउंग को 3-2 से हराया। ये अभय का 13वां और इस वर्ष का दूसरा PSA टूर खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्च में मुंबई में इंडियन ओपन खिताब जीता था। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शानदार शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। बेल्जियम में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। जर्मनी की तरफ से मिशेल स्ट्रुथॉफ ने गोल किया। जर्मनी का ये चौथा पुरुष विश्व कप खिताब है। इससे पहले अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनाने जा रहे हैं प्रतिमा वर्मा की पूर्व प्रसाद तालिक, विषय है कीटनाशी छिड़काव में सावधानियां बरतें।
3: नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में आज बातें कीटनाशकों के प्रयोग में सावधानियों की। किसान भाइयों, कीटनाशकों के खेतों में प्रयोग करते समय कुछ खास बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जी हाँ किसान भाइयों, फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशकों के छिड़काव के समय अगर सावधानी ना बरती गई तो किसानों की जान तक जा सकती है। ऐसे में किसान को सावधानी बरतकर बचाव कर सकते हैं, जरा सी असावधानी खतरनाक साबित हो सकती है। कीटनाशक रासायनिक और विषैले होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कीटनाशक का प्रयोग करते समय यह देख लेना चाहिए कि उपकरण में लीकेज तो नहीं है। कभी भी कीटनाशक उपकरण पर मुंह लगाकर घोल खींचने का प्रयास ना करें। तरल कीटनाशकों को सावधानी पूर्वक उपकरण में डालना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि यह शरीर के किसी अंग में ना जाए। अगर ऐसा होता है तो तुरंत साफ पानी से कई बार धोना चाहिए। कीटनाशकों के छिड़काव के लिए उपयुक्त समय सुबह या सायंकाल होता है। इनका प्रयोग करते समय यह ध्यान रखें कि आसपास हवा तेज गति से ना चल रही हो। जब आप कीटनाशक को खेत में छिड़काव करने के लिए तैयार कर रहे हो तो उसमें साफ पानी का इस्तेमाल करें। हमेशा अपने हाथ, नाक, आंखें, कान और मुंह को ढक लें। सिर को भी ढक लें। हाथों को ढकने के लिए पॉलिथीन बैग से बने दस्ताने पहने। सिर को ढकने के लिए पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल ना करें। सिर को कैप या तौली से ढकें और चेहरे को रुमाल, साफ कपड़े या मास्क से ढकें। छिड़काव का घोल तैयार करने से पहले कंटेनर के ऊपर जो लेबल लगा हो उसे पढ़ लें।

0: करें। खाली कीटनाशक कंटेनर को किसी भी दूसरे काम में इस्तेमाल ना करें। जी हाँ किसान भाइयों, कृषि वैज्ञानिक द्वारा बताई गई या कीटनाशक के कंटेनर पर लिखी मात्रा में ही छिड़काव करें। बहुत गर्म दिन में या जिस दिन तेज हवा चल रही हो कीटनाशक का छिड़काव ना करें। हमेशा हवा के 90 डिग्री कोण पर छिड़काव करें। जब बारिश होने वाली हो तब या बारिश होने के तुरंत बाद छिड़काव ना करें। हवा के बहाव की विपरीत दिशा में छिड़काव ना करें। नोजल की ऊंचाई करीब 1.5 फुट रखें और इधर उधर ना घुमाएं। किसान भाइयों, कीटनाशक का घोल बनाते समय जिस कंटेनर या बाल्टी का इस्तेमाल करें उसे दोबारा कभी किसी घरेलू काम में उपयोग में ना लाएं। कीटनाशक के छिड़काव के बाद जानवरों या किसी भी व्यक्ति को खेत में ना जाने दें। कभी भी खाली पेट छिड़काव ना करें। कीटनाशक तैयार करते समय शरीर को जिस तरह ढका था उसी तरह उसका छिड़काव करते समय भी ढक लें। छिड़काव के बाद सारे कपड़े गर्म पानी में साबुन से धोएं और साबुन से स्नान भी कर लें। कीटनाशी का छिड़काव करने के बाद बचे हुए कीटनाशक को कभी भी किसी तालाब, कुएं या किसी भी पानी के स्रोत में ना बहाएं, बल्कि कोशिश करें कि इसे ऐसी बंजर जमीन पर फेंकें जहां किसी का आना जाना ना हो। खाली कंटेनर को किसी पत्थर से तोड़कर उसे पानी से दूर कहीं जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें। स्प्रेयर और बाल्टी को इस्तेमाल करने के बाद साबुन से 4 से 5 बार धोएं। किसान भाइयों, घर में कीटनाशक कभी भी ना रखें। इसके असली कंटेनर में ही इसे रखें और कंटेनर को ठीक से बंद करें। दूसरे कंटेनर में कीटनाशक ना डालें। कीटनाशक को ऐसी जगह ना रखें जहां खाना या चारा रखा हो। पानी और सूरज की रोशनी की पहुंच से दूर रखें। कीटनाशक और घास फूस नाशक को एक साथ ना रखें। किसान भाइयों, ये हुई बातें कीटनाशकों के छिड़काव के समय बरती जाने वाली सावधानियों की। इसी के साथ कार्यक्रम से अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रतिमा वर्मा की पूर्व प्रसारित आलेख। विषय था कीटनाशी दवाओं के छिड़काव में बरतें सावधानियां। अब आइए सुनते हैं श्री राम चरित मानस।

उधर दशरथ पुत्रों से, चाहे वे भगवान के अवतार भी हों, लोहा लेने का निश्चय करके रावण मारीच के पास पहुंचता है और इधर श्रीराम जनक नंदिनी पर मनुष्य लीला करने का अपना मंतव्य प्रकट करते हैं। जब तक रावण का विनाश न हो जाए, सीता अग्निदेव की शरण चली जाती हैं।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह डाल्टनगंज केंद्र है। अब आइए सुनते हैं हमारा आज का चिंतन।
1: भारत की पावन भूमि पर कई संत महात्मा अवतरित हुए हैं, जिन्होंने धर्म से विमुख सामान्य मनुष्य में अध्यात्म की चेतना जागृत कर उसका नाता ईश्वरीय मार्ग से जोड़ा है। ऐसे ही एक अलौकिक अवतार गुरु नानक देव जी हैं। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी का आगमन ऐसे युग में हुआ जो इस देश के इतिहास के सबसे अंधेरे युगों में था। उनका जन्म 1469 में लाहौर से 30 मील दूर दक्षिण पश्चिम में तलवंडी रायभोर नामक स्थान पर हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। बाद में गुरुजी के सम्मान में इस स्थान का नाम नानकाना साहिब रखा गया। श्री गुरु नानक देव संत, कवि और समाज सुधारक थे। धर्म काफी समय से थोथी रस्मों और रीति रिवाजों का नाम बनकर रह गया था। उत्तरी भारत के लिए यह कुशासन और अफरा तफरी का समय था। सामाजिक जीवन में भारी भ्रष्टाचार था और धार्मिक क्षेत्र में द्वेष और कश्मकश का दौर था। न केवल हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में ही, बल्कि बड़े धर्मों के भिन्न भिन्न संप्रदायों के बीच भी। इन कारणों से भिन्न भिन्न संप्रदायों में और भी कट्टरता और बैर विरोध की भावना पैदा हो चुकी थी। उस वक्त समाज की हालत बहुत बदतर थी। ब्राह्मणवाद ने अपना एकाधिकार बना रखा था। उसका परिणाम यह था कि जाति का भेदभाव बहुत अधिक था। निम्न जाति के लोगों को पढ़ना लिखना बिल्कुल वर्जित था। इस ऊंच नीच का गुरु नानक देव जी पर बहुत असर हुआ। वे कहते हैं, ईश्वर की निगाह में सब समान हैं। ऊंच नीच का विरोध करते हुए गुरु नानक देव जी अपनी मुखवाणी जपुजी साहिब में कहते हैं कि नानक उत्तम नीच न कोई, जिसका भावार्थ है कि ईश्वर की निगाह में छोटा बड़ा कोई नहीं है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति किसी को छोटा समझता है तो यह बिल्कुल गलत है। जब व्यक्ति ईश्वर के नाम द्वारा अपना अहंकार दूर कर लेता है, तभी वह ईश्वर की निगाह में सबसे बड़ा है, उसके समान कोई नहीं। नानक देव की वाणी में नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अति नीच, नानक तिन के संगी साथ, वडियां सिउ किया रीस। समाज में समानता का नारा देने के लिए नानक देव ने कहा कि ईश्वर हमारा पिता है

0: सब उसके बच्चे हैं और पिता की निगाह में छोटा बड़ा कोई नहीं होता। वही हमें पैदा करता है और हमारे पेट भरने के लिए खाना भेजता है। नानक जंत उपाई के संभाले सब नाह, जिन करते कर ना किया चिंता भी करनी ताहर। जब हम एक पिता एकस के हम वारिक बन जाते हैं तो पिता की निगाह में जात पात का सवाल ही पैदा नहीं होता। गुरु नानक जात पात का विरोध करते हैं। उन्होंने समाज को बताया कि मानव जाति तो एक ही है, फिर यह जाति के कारण ऊंच नीच क्यों? गुरु नानक देव ने कहा है कि मनुष्य की जाति न पूछो। जब व्यक्ति ईश्वर की दरगाह में जाएगा तो वहाँ जाति नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ आपके कर्म ही देखे जाएंगे। गुरु नानक देव ने पितर पूजा, तंत्र मंत्र और छुआछूत की भी आलोचना की। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु नानक साहिब हिंदू और मुसलमानों में एक सेतु के समान हैं। हिंदू उन्हें गुरु एवं मुसलमान उन्हें पीर के रूप में मानते हैं। हमेशा ऊंच नीच और जाति पाति का विरोध करने वाले नानक ने सबको समान समझकर गुरु का लंगर शुरू किया, जो एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने की प्रथा है। गुरु नानक जी की गुरुवाणी। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पूरक अकाल मूरत अजूनी सैभम, गुरु प्रसाद जप आड़ सच जुगाड़ सच, है भी सच नानक हो से भी सच, सोच सोच न होवे जो सोची लाख वार, छुपे छुपे न होवे जे लाई हर लखता, रोखिया पुख न उतरी जे बनिया पुरिया पार, सहास्या पा लाख वह है ता एक न चले नाल, केवे सच यारा होइए केवे कूड़े टूटते पाल, हुकुम रजाई चलना नानक लिखिए नाल।
1: आप सुन रहे थे हमारा आज का चिंतन। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम आराधना।

0: आराधना कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत, आवाजें थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और तृप्ति शाकिया की। तो इसी के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अब आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर राकेश कुमार से ली गई बातचीत। विषय है बच्चों की आँखों की देखभाल कैसे करें। विशेषज्ञ हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार, बातचीत कर रहे हैं संजय कुमार सिन्हा। नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज हम बातें करेंगे नेत्र पर, यानी अपनी आँखों को कैसे स्वस्थ रखें। आँखें जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है, आँखें हैं तो पूरा संसार है। तो आँखों को स्वस्थ कैसे रखें, किस उम्र में कैसे आँखों को स्वस्थ रखना है, इसी विषय पर हम बातें करेंगे। हमारे बीच से उपस्थित हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार जी। राकेश कुमार जी, आपको हमारा नमस्कार।
1: धन्यवाद आपने बुलाया मुझे।
0: तो आँखों की बात होती है तो सबसे पहले क्या होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है उस समय 0 से लेकर 5 वर्ष तक कैसे माँ बाप उनकी आँखों की रक्षा करें, इस विषय पर पहले हम यही बातें करना चाहेंगे।
1: आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया और मैं इसमें डिटेल से बताना भी चाहूँगा, क्योंकि मैं आरओपी स्पेशलिस्ट भी हूँ, रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी। तो हम लोग सबसे पहले जीरो, जैसे आपने सब जीरो मतलब कि बर्थ वेट उसका कितना था, कितने समय में उसका जन्म हुआ, गेस्टेशनल एज कितना था, तो सब पे उसका मतलब आई का प्रोग्रेस निर्भर कर जाएगा। यदि बच्चा प्री मैच्योर हुआ है, ठीक है, ट्वींस हुआ है, कोई प्रॉब्लम का था, तो उसको बहुत जल्दी चश्मे लगने की संभावना होती है। तो उसको हम लोग 6-6 महीने पे फॉलोअप करेंगे, रेटिनल डॉक्टर को दिखाएंगे, उसका पर्दा कैसा है, फंडस एग्जामिनेशन कैसा है, उसको देखेंगे। जो बच्चा मैच्योर हुआ है तो उसको फॉलो करेंगे 1 साल के बाद कि कहीं वो उसको चश्मे की ज़रूरत है कि नहीं है। जो मैच्योर बच्चे होते हैं उनको चश्मे की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन प्री मैच्योर में बच्चों को जल्दी चश्मा लग जाता है। किसी का बर्थ वेट कम रहता है तो उसको जल्दी चश्मा लग जाता है। तो सबको हम लोग इवेल्युएट करेंगे। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो हम लोग टॉर्च लाइट, सिंपल टॉर्च लाइट से,
0: अच्छा,
1: कि बच्चे का रिफ्लेक्स कैसा है, वाइट तो नहीं दिख रहा है, कलर में कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहा है, तो बहुत सारे बीमारियों को हम लोग जान सकते हैं, जैसे रेटिनोब्लास्टोमा वगैरह बीमारी होती है। तो वो सिंपल एक टॉर्च से ही हम लोग को पता चलेगा कि बिल्ली जैसे आंखें तो नहीं लग रही हैं। वैसा है तो जरूर नज़दीक के डॉक्टर के पास ले जाएं, दिखाएं, हो सकता है रेटिनोब्लास्टोमा हो, या हो सकता है एक आंख में रोशनी ना हो, बच्चा तिरछा तो नहीं देख रहा है। इसलिए शुरू से ही ये इवेल्युएशन स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो देखते हैं बच्चों में मोबाइल की लत पड़ जाती है। बच्चा खाने के लिए मोबाइल ले रहा है, कुछ करने के लिए मोबाइल ले रहा है, तो उससे बच्चों में चश्मा लगने की चांस।
0: बात शुरुआत की थी कि 0 से लेकर 5 वर्ष तक आँखों की जो है रख रखाव, कि उनकी आँखों का साफ सफाई, जैसे क्या होता है कि बहुत तरह की जो है केमिकल भी आँखों में लगा देते हैं लोग, बहुत तरह का काजल, आर्टिफिशियल काजल लगाते हैं। रख रखाव जो बच्चों की आँखों का जो है सुरक्षा कैसे माँ बाप करें, इस विषय पर।
1: तो इसमें यह है कि जैसे काजल लगाने के हम लोग मना करते हैं, क्योंकि आजकल हर चीज़ मिलावटी मिल रहा है, बहुत बच्चों लोग को इन्फेक्शन हो जाता है। आपको नज़र से बचाना है तो माथे पे टीका कर दीजिए, कान के पीछे टीका लगा, आँखों में काजल लगाने की आवश्यकता नहीं है। और माँ यदि बहुत अच्छा से डाइट लेगी, सब कुछ लेगी, तो बच्चे को भरपूर दूध मिलेगा जो उसका पोषण बढ़ाएगा, जो आँखों की रोशनी भी बढ़ाएगा। इसलिए माँ को भी बहुत अच्छा तरह से खाना पीना है ताकि बच्चों को जो पोषण मिले माँ के दूध के द्वारा वो भी अच्छा हो और बच्चे का नेत्र का अच्छा से विकास हो। इसमें आँखों में बहुत ज़्यादा सफाई ये सब की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे बच्चा नॉर्मली होता है, नहलाते हैं, एक बार हल्का सा हाथ से पोंछ दिया, या सॉफ्ट कपड़े, सूती कपड़े से पोंछ दिया, उसको रगड़ने की आवश्यकता नहीं है, आँख को दाबने की आवश्यकता नहीं है, आँख को छींटे मारने की आवश्यकता नहीं है।
0: बरसातों के दिन में क्या होता है कि आँख आना, लालीपन आ जाना, तो ये क्या है?
1: एक है कि ये पानी के कारण, दूषित होने के कारण ये हो जाता है, ठीक है। इसको आई फ्लू भी बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। तो किसी के संपर्क में आने से, गंदे पानी को टच करने से, या बरसात का पानी आँख में जाने से आँख को मस देने, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। इसमें क्या है कि प्रॉपर ठंडे पानी से बार बार आँखों को धोए, किसी तरह से कोई मरीज से ग्रसित है तो उनसे दूर रखें, अपने कपड़े, अपने बेड बिस्तर को अच्छे से साबुन से धोकर, उसको टॉवल वगैरह को धोकर पहने, सफाई का ज़्यादा हो जाने से। जैसे हमारे यहाँ सफाई पे लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कूड़े कचरे को नहीं गए, तो ये बीमारी दिन प्रतिदिन कम हो रही है। ये एक तरह का गंदगी का द्योतक है कि जल्दी जो हाथ जो गंदगी में रहेगा उन लोगों को आई फ्लू होने की संभावना ज्यादा हो जाती है।
0: ये क्या छुआछूत का बीमारी है, भी है क्या ये?
1: किसी एक से दूसरे को हो सकता है।
0: बच्चे लोग हैं
1: स्कूल में जा रहे हैं, हाँ
0: विद्यालय जा रहे हैं,
1: हाँ ये हो जाता है,
0: ये हो जाता है,
1: ये हो जाता है।
0: देखते हैं बच्चों लोगों का आँख सड़ जाता है, वो जैसे आँख आने के बाद क्या है कि इसमें सफेद आ जाता है, सड़ जाता है, तो उसे लोग छोड़ देते हैं कभी कभी, उसे साफ नहीं करते हैं, तो क्या साफ करने के
1: नहीं
0: दौरान
1: साफ करना
0: क्या
1: चाहिए।
0: प्रक्रिया, जैसे सड़ जाने के बाद क्या करें वो?
1: सड़ जा रहा है तो आप सबसे पहले साफ

0: पानी, साफ पानी से आंखों को धोएं, उसको एक बार नहीं 8-10 बार ठंडे पानी से आंख को धोएं। पहला तो इसी से ठीक हो जाता है, नहीं तो सिंपल एंटीबायोटिक हम लोग देते हैं उससे भी ठीक हो जाता है। प्रॉपर हाइजीन से ही इसका मेंटेनेंस हो जाता है, दवाई की भी कभी कभी आवश्यकता नहीं पड़ती है।
1: मतलब 6 क्लास के बच्चे लोग भी हैं वो भी चश्मे का प्रयोग कर रहे हैं, क्या कारण है कि उनकी आंखों पर जो है मोटे मोटे चश्मे लग गए हैं?
0: जैसे मैंने शुरू में ही बताया आपको कि प्रीमेच्योर बर्थ हो गया, बच्चे मोबाइल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि बिल्डिंग बड़ी बड़ी बन रहे हैं, लोगों को खेलने का जगह नहीं मिल रहा है, सब लोग सीमित हो गए हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ मिल नहीं रहे हैं, फील्ड में नहीं खेल रहे हैं, जबकि सनलाइट में यदि बच्चा खेले तो जैसे हमारे एथलीट्स होते हैं उनको चश्मा नहीं लगता है, तो सनलाइट में जाने से, सनलाइट में खेलने से सन एक प्रोटेक्टिव है कि आपको चश्मा लगने का चांस कम हो जाएगा। जितना आप घर में रहिएगा, अंधेरे में रहिएगा, मोबाइल यूज़ करिएगा, आपको उतना चश्मा लगने का चांस ज़्यादा हो जाएगा।
1: तो अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे, उन्हें सनलाइट की आपने बात कही?
0: खेलना है बच्चों को, खेलना है, शाम में खेले, मतलब 3-4 बजे बच्चे छाएं, फील्ड में खेले, प्रॉपर क्रिकेट खेले, बैडमिंटन खेले, डे टू डे एक्टिविटीज़ होता है, डे स्पोर्ट्स होते हैं वो खेलें, निकलना जरूरी है, निकलना बिल्कुल,
1: उनका शरीर भी
0: मानसिक शारीरिक सब तरह से तंदुरुस्त रहेंगे।
1: 40 के बाद जो है रोशनी कम आ जाता है,
0: अच्छा ये फिजियोलॉजिकल है, 40 के बाद नजदीक के लिए चश्मा लगता ही है मैक्सिमम लोगों को, ये फिजियोलॉजिकल है, कोई बीमारी नहीं है, 40 के बाद नजदीक के चश्मा की जरूरत पड़ती ही है।
1: रोशनी कम है तो हमें क्या डॉक्टर से तुरंत संपर्क में आना चाहिए?
0: रोशनी कम है तो एकदम डॉक्टर से संपर्क करें, वही बता सकते हैं कि रोशनी कम होने का क्या कारण है, कहीं आपको रेटिना का प्रॉब्लम है, कॉर्निया का प्रॉब्लम है, या ग्लोकोमा है। हम लोग 40 साल के बाद सभी लोगों को, जैसे आप लोग ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं, 40 के बाद इंट्राओक्युलर प्रेशर का भी चेक कराएं, आंखों का प्रेशर चेक कराएं, कहीं वो ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा है। जैसे ग्लोकोमा तो आपको हर चीज़ धुंधली नज़र आएगी, किसी का चेहरा पूरा नज़र नहीं आएगा, चेहरा दिखाई दे रहा है तो पीछे नाक नहीं दिखाई दे रहा है, धुंधला जैसा नज़र आएगा।
1: जैसे दूर की रोशनी और नज़दीक की रोशनी, बहुत लोगों को जो होता है दूर की रोशनी है, बाहर अगर 20-30 फीट की दूरी पर है तो उसे स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं कि अखबार नहीं पढ़ पाते हैं, हमें नज़दीक की रोशनी उन्हें कम होती है, तो ये क्या है दूर की रोशनी और नज़दीक?
0: दूर की नज़दीक बहुत ही, जैसे एज के अनुसार 40 के बाद बोल रहे हैं, अखबार पढ़ने की बात बोल रहे हैं, तो फिजियोलॉजिकल है, प्रेसबायोपिया बोलते हैं, उनमें नज़दीक का चश्मा का जरूरत पड़ता है। किसी किसी को दूर का भी दिक्कत हो रहा है, नज़दीक का भी दिक्कत हो रहा है, तो उनमें कुछ रिफ्रैक्टिव एरर है, जैसे प्लस में पावर है, हाइपरमेट्रोपिया है, मायोपिया है, ठीक है, उसको करेक्ट करना पड़ता है। देखिए दिन प्रतिदिन हर 1.5-2 साल पे ये 40 के बाद है तो चश्मे का पावर चेंज हो जाता है, तो आपको डॉक्टर से मिलना होगा, चश्मे का पावर चेंज होगा, नहीं होगा तो फिर 6 महीने के बाद आपको टेस्ट करवाना है, और ये चश्मा पहनने से ये नहीं हो जाता। लेकिन बच्चों में कहा जाता है कि आप जो मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, तो आप रेगुलर चश्मे का उपयोग करें, नहीं तो आपका पावर ज़्यादा बढ़ जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, कहा गया है कि खान पान का भी जो है हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव भी पड़ता है और बुरा प्रभाव भी पड़ता है, तो आँखों को स्वस्थ रखने के लिए क्या खान पान भी नियमित रूप से, या किस खास विशेष जो व्यंजन या खास तरह की जो सब्जियां का सेवन करना क्या उचित है?
0: जी, पहले हम लोग देखते थे कि हमारे दादा दादी थे, नाना नानी थे, चश्मा नहीं पहनते थे, क्योंकि उसमें संतुलित आहार मिलता था, उसमें मिलावटी नहीं मिलता था, आज हर चीज़ मिलावटी मिल रही है, तो इसमें खान पान का बहुत महत्व पड़ जाता है। जैसे हरे सब्जी, साग सब्जी खाएँ, पालक खाएँ, मशरूम खाएँ, मछली खाएँ, अंडा खाएँ, इसमें विटामिन ए रहता है, विटामिन सी लें, विटामिन बी लें, तो फल ये सब ले, साग सब्जी ले, हरा साग सब्जी वगैरह खाएँ, तो आई के लिए बहुत ज़रूरी होता है।
1: तो बच्चों को भी चाहिए, अभिभावकों को भी चाहिए कि बच्चों को जो है अपने खास जो भोजन देते हैं उसमें हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन उसमें रहे, और विशेषकर साग जो होते हैं, साग सब्जी का भी ग्रामीण लोग कहते हैं कि अगर सरसों का साग अगर हम सेवन करें ज़्यादा तो आंखों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। कि
0: सरसों का साग जिसमें विटामिन ए हो, विटामिन बी, विटामिन सी हो, वो अच्छा माना जाता है सरसों के साग के अलावा। गाजर हो गया, मूली हो गया, जिसमें और नेचुरल जो घी बनाते हैं वो लोग, जिसे हम लोग घी इंडस्ट फूड देते हैं, जिससे विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन बढ़िया होता है, वो सब भी अच्छा होता है, जो गाँव में नेचुरल जो घी मिलता है वह आँखों के लिए बहुत बढ़िया।
1: तो 40 के बाद मेरा आँख स्वस्थ रहे इसके लिए पहले से हमें सजग रहना पड़ेगा, अपने खान पान को नियमित रखना पड़ेगा, संतुलित आहार लेना पड़ेगा, और क्या सोना, अगर हम अगर भरपूर अगर नींद नहीं ले रहे हैं तो इसका भी क्या आँखों पर प्रभाव पड़ता है?
0: बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, स्ट्रेस के कारण आपको दिक्कत हो सकता है। प्रॉपर 6 घंटा जरूर सोना चाहिए, 10 बजे सोएं और 5-6 बजे तक उठे, 4 बजे तक उठे, तो आंखें स्वस्थ रहेंगी, आंखों को भी रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा देर जागने से, ज़्यादा मोबाइल देखने से, ज़्यादा टीवी देखने से आँख ड्राई हो जाती हैं और पावर बढ़ जाता है।
1: जिनका आँख का ऑपरेशन हो गया है, जिसे अभी बहुत तकनीक डेवलप किया है, तुरंत पहले अभी तो देख रहे हैं कि ऑपरेशन होता है तुरंत लोग घर चले जाते हैं, पहले दो तीन दिन डिस्पेंसरी में या अस्पताल में लोग रहते थे। तो ऑपरेशन के बाद क्या उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए उन्हें?
0: ऑपरेशन के बाद लगभग हम लोग एक हफ्ते के लिए सावधानी बोलते हैं, जैसे है कि धूल धुआं धक्का से बचना है, आँख को गल छूना नहीं है, सुबह शाम पतला रुमाल या पतला कॉटन को उबाल लीजिए, उससे किचि वगैरह आता है उसको पोंछने के लिए बोलते हैं, गर्दन से नीचे नहाने को बोलते हैं। तो एक हफ्ता का तो पूरा प्रिकॉशंस लेना ही चाहिए। उसके बाद एक हफ्ता के बाद आप जिसने आपके डॉक्टर ने ऑपरेशन किया उनके पास जाइए और दिखलाइए, और वो यदि सलाह देते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। नॉर्मली एक हफ्ता तक स्ट्रिक्ट,
1: एक सप्ताह तक रहा, धूप
0: धूल धुआं धक्का से बचना है।
1: ये अभी जो है आप स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, तो अब ये शिविर लगते हैं विशेषकर जाड़े के मौसम में, तो ये निःशुल्क जो है आँखों का ऑपरेशन का प्रचार प्रसार होता है, तो ये क्या स्थानीय स्तर पर या फिर जो ग्रामीण स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर होते हैं, पंचायत स्तर होते हैं, ये सभी स्तरों पर होते हैं या फिर केवल जो है जिला स्तरीय होता है ये कार्यक्रम?
0: नहीं नहीं सारे स्तर पर होते हैं, जिला स्तर पर होते हैं, आपको ग्रामीण स्तर पर, शहरी क्षेत्र पर, सब जगह वो लोग अपना अपना कैंप लगाते हैं, वहाँ से मरीज को लाते हैं, इवेलुएट करते हैं, ऑपरेशन कराते हैं।
1: तो अभी कुछ दिन के बाद जो है अक्टूबर नवंबर से प्रारंभ हो जाता है ये आंखों का ऑपरेशन,
0: कभी बंद नहीं होता, लेकिन भ्रांति है कि लोग कराना चाहते हैं जाड़े में, कराना है
1: जाड़े में, ज़्यादा ये होता है कि जाड़े के दिनों में हम
0: ये भ्रांति से भी लोगों को बचना होगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे ग्लोकोमा के, मतलब नॉर्मल कैटरेक्ट था, मोतियाबिंद था, वो नहीं कराया तो ग्लोकोमा में कन्वर्ट हो गया, जिससे का नाक की रोशनी ही चली गई, ऐसा भी हम लोग बहुत सारा केस देख रहे हैं।
1: 40 के बाद वाले का जिनका आँख स्वस्थ है, उन्हें आगे भी उनके आँख स्वस्थ रहें, इसके लिए क्या करें? वो
0: खान पान पर ध्यान देना है और हर 6 महीने पर डॉक्टर से सलाह लेनी है।
1: मतलब 40 के बाद जो है वो नेत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क में रहें।
0: किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या कोई प्रॉब्लम है तो आँखों का जाँच कराना है, पर्दे का जाँच कराना है, प्रेशर चेक कराना है, ज़रूरी है।
1: कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है कि जैसे कि 50 तक आँख उसका ठीक था, अचानक उसकी आँखें कोई रोशनी चली गई, ऐसा कब होता है?
0: ऐसे कोई यदि मान लीजिए पेशेंट सफ़र कर रहा है डायबिटीज़ से,
1: अच्छा,
0: पेशेंट सर उनको सफ़र कर रहा है हाइपरटेंशन से, हाइपरटेंशन के कारण ब्लीड हो गया आँखों के अंदर,
1: अच्छा,
0: डायबिटीज़ के कारण पर्दे में सिकुड़न आ गया, ब्लड आ गया, ठीक है, चोट के कारण, बहुत सारा ऐसा चीज़ों में हो जाता है,
1: इससे बचना चाहिए,
0: इससे बचना है।
1: डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, समय कम है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं इस विषय पर, पुनः आपसे मुलाकात होगी, अगले बार फिर विशेष रूप से हम बातचीत करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आपको।

0: अथ वार्ताः। भारत उज़्बेकिस्तान देशाभ्याम् अद्य खनन आयुर्वेद पर्यटनार्थिक सहयोग पर्यावरण उच्च शिक्षादि क्षेत्रेषु परस्पर सहयोग संवर्धनाय संधिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। देशद्वयेन 30-2000 वर्षं यावत् 5 अर्बुद डॉलर मितं व्यापार लक्ष्यं निर्धारितम्। यदि सांप्रतिक व्यापारस्य पञ्चगुणितं वर्तते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज़्बेकिस्तानस्य सर्वोच्च सम्माननम् अपि अलभत। इदं सम्माननं देशद्वयस्य मध्ये सहयोग संवर्धने तदीय योगदानाय उपायनीकृतम्। ताशकंद नगरे उज़्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिः शावकत मिर्ज़ियोयेवः प्रधानमंत्रिणे नरेंद्र मोदिने सर्वोच्च राजकीय सम्मानेन ऑर्डर ऑफ ओलिया दर्जाली दोस्तलिक इत्यनेन सम्मानितवान्। प्रधानमंत्रिणा एषः सम्माननः भारत उज़्बेकिस्तानयोः दृढ़ संबंधेभ्यः समर्पितः।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
0: श्री मोदी अवोचत यत् सम्मानं प्राप्य असौ गौरवानुभवति, अपि च देशद्वयं व्यापक रणनीतिक संरचनायाः अन्तर्गतं निर्णायक लक्ष्य निर्धारणार्थम् अग्रे समेधयिष्यन्ते। राष्ट्रपतिना शावकत मिर्ज़ियोयेव इत्यनेन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस दो दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिम अलीफ आदिलबेक अलीशोविच ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए पारंपरिक किर्गिज नृत्य का आयोजन किया गया। श्री मोदी राष्ट्रपति सादो जापारोव के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिस्तान की यात्रा पर। आशा है कि शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी संगठन के कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा है कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। अब तक 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में एक और बाढ़ के कारण सस्पेंशन पुल बह गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय

नागरिकों को बचाया गया है। करीब 50 लापता भारतीय नागरिकों से संपर्क हो गया है, लेकिन 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका में दक्षिण कैरोलिना के एशविले में G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिखर में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के ठिकानों का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सुरक्षा बलों ने बेलपोचा गोमपाड़ के घने जंगलों में छिपा कर रखे गए विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया है। ये संयुक्त अभियान सुकमा जिला बल, जिला रिजर्व गार्ड DRG और बस्तर फाइटर्स ने चलाया। ये कार्रवाई हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कैडरों से मिली विशेष फाइनल में हांगकांग के हेनरी लिंग को 3-2 से हराया। ये अभय का 13वां और इस वर्ष का दूसरा PSA टूर खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्च में मुंबई में इंडियन ओपन खिताब जीता था। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ ही शानदार शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 8 बजे शुरू होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने श्रीलंका से 2027 में होने वाली पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीन ली है। श्रीलंका क्रिकेट प्रशासन में सरकार के हस्तक्षेप के कारण ये फैसला किया गया है। प्रतियोगिता में मेजबान श्रीलंका सहित 6 टीमें हिस्सा लेने वाली थीं। ICC बोर्ड की अगली बैठक में टूर्नामेंट के नए आयोजन स्थल के बारे में फैसला होने की संभावना है। आयोजन स्थल बदलने से श्रीलंका की टीम के इस टूर्नामेंट में खेलने पर भी सवाल खड़ा हो गया है। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। बेल्जियम में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। जर्मनी की तरफ से मिशेल स्ट्रुथॉफ ने गोल किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भूषण त्रिपाठी के गाए भजन।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी 7:15 पर हम आपको सुनाएंगे लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम पलाश। सात बजकर 30 मिनट पर आप सुनिएगा सुगम संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर सरिता। कलाकार होंगे रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर। सुबह के 8 बजे हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर हम आपको लिए चलेंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनते हैं प्रादेशिक समाचार। लौटेंगे स्टूडियो 8:45 पर और सुनवाएंगे फिल्मी गीतों का प्रोग्राम गीत गुंजन। खेल विज्ञान और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों पर आधारित कार्यक्रम आप सुनिएगा जवाहर पलामू सुबह के 9 बजे। संयोजन करता होंगे मन प्रशांत गौरव और प्रस्तुति स्वर होगा संजय कुमार सिन्हा का।

9:30 पर हम आपको सुनाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दिन के 10 बजे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार 10:05 से। 10:10 पर हम आपको लिए चलेंगे अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। दोपहर में 1 बजे सुनिएगा हिंदी में समाचार।

ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम पलाश।

0: पलाश कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नागपुरी लोक गीत। कलाकार थे धर्मू नायक, शाहबुद्दीन अंसारी और उनके साथी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। अब आइए सुनते हैं सुगम संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम स्वर सरिता। इस प्रोग्राम में हमारे आज के कलाकार हैं रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर।
1: हमारे पास मालो मताए दुनिया में से तो कोई चीज नहीं है जो आइंदा तुम्हारे काम आए, लेकिन हमारा सरमाया नाज कानून जबान है जिस पर हमारी जिंदगी और इज्जत का दारो मदार रहा है, जिसने हमें खाके मजिल्लत से आसमान शोहरत पर पहुंचा दिया। उस दौलत के आगे हम सल्तनत आलम को हैच समझते रहे। तुमको भी अपने तरके में यही दौलत देते हैं। नाम है खस्ता ओ आवारा ओ बदनाम मेरे, एक आलम ने गरज मुझको कहा क्या क्या कुछ। एक महरूम चले मीर हमी आलम से, वरना आलम को जमाने ने दिया क्या क्या कुछ।

0: आप सुन रहे हैं सुगम संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम स्वर सरिता,
1: और मुझे बेखुद कर देता था। जिधर भी मेरी आंख उठती उसी रश्क परी पर पड़ती, जिस तरफ भी देखता था उसी गैरते हूर का तमाशा करता था। मेरे घर के दरोबाम और सहन वर्क तस्वीर हो गए थे। अगर गुले महताब पर नजर पड़ जाती तो गोया जाने बेताब में आग सी लग जाती। हर रात उससे सोबत रहती और हर सुबह उस बिन वहशत रहती। जब सफेदाए सहर नमूदार होता तो वो जले दिल से ठंडी आह भरकर चांद की तरफ वापस हो जाती। मैं तमाम दिन जुनून करता और उसकी याद में दिल को खून करता। बस वो ख्याली सूरत नजर में और उसकी मुश्की जुल्फों का ध्यान सर में।

0: रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर से आप सुन रहे हैं उनकी गाई हुई चंद गजलें।
1: वालिद की मौत के बाद मैंने फलक की बेमुरवती देखी, जमाने के सितम झेले। नहीं नहीं, फलक या जमाने का क्या कसूर, मेरा ही सितारा मनहूस था कि ऐसे आफताब का साया मेरे सर से उठ गया। जो कुछ किया मेरी किस्मत ने किया, अपने ही हाथ के सिवा किसी और का हाथ अपने सर पर ना पाया। अपना ही हाथ सर पे रहा अपने यहां सदा, मुश्फिक कोई नहीं।

भरे रहते हैं सारे फूल ही जिसके गरीबा में, वो क्या जाने कि टुकड़े हैं जिगर के मेरे दामा में। हवाए अब्र में क्या मीर हंसता बाग में वो था, गिरी पड़ती है बिजली आज कुछ सहने गुलिस्ता में।

श्रोताओं, स्वर सजदा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर की आवाज़ों में गीत और गज़ल। तो इसी के साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अब समाप्त होता है। शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा समाचार प्रभात और

0: साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत ज्यादा काम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्र अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी ने वर्ष 2015 की अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही रूस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। श्री मोदी आज 6ठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। ये आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। यात्रा का एक शानदार पल तब आया जब राष्ट्रपति शौकत मिर्जियेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार भारत उज्बेकिस्तान संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
5: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: नेपाल में भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है।
6: सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों के बीच सुपौल जिला प्रशासन ने कहा है कि कोसी नदी के जलस्तर में सामान्य गति से वृद्धि हो रही है और कोसी बैराज पूरी तरह सुरक्षित है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जिला संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को लगातार तटबंधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उड़ीसा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है।
7: IMD ने कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। आज बरगढ़ के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है, जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, केंदुझर, सुवर्णपुर, नुआपड़ा, बलांगीर और कलाहंडी के लिए ऑरेंज वार्निंग है। IMD ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से संवेदनशील इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़, जल जमाव और नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं असम, मेघालय, पूर्वी मध्य

0: वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते देखा गया था। ईरान की सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल अदा की। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत डीएसवी निपुण को शामिल करने जा रही है।
1: विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोत निपुण रक्षा पोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निपुण एक विशेष पोत है जिसे गोताखोरी और गहरे समुद्र में अभियान सहायता के लिए तैयार किया गया है। यह आधुनिक गोताखोरी प्रणालियों और जलमग्न बचाव क्षमताओं से सुसज्जित है और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने में सक्षम है। यह पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला और ब्लॉक स्तर के जमीनी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता से मिलें। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे शिवपुरी, कोलारस और पिछोर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पहले दिन वे अछरौनी और बामौर कला में स्वास्थ्य केंद्रों, बिजली उप स्टेशनों और एक उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कल एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अलीपुरद्वार के रहने वाले 2 लोग मोटरसाइकिल से दार्जिलिंग घूमने आए थे। रास्ते में मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उसने सड़क पर चल रहे एक स्थानीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चलाने वाले और स्थानीय व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर ज्ञान वर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0111-2331-4444। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। नंबर है 9289094044। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIR News हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा।
3: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, लंबे समय तक भारत को यूरेनियम देगा उज्बेकिस्तान, 2030 तक सालाना द्विपक्षीय कारोबार $5 अरब पहुंचाने का लक्ष्य। रूस को पेट्रोल निर्यात करने वाला प्रमुख देश बना भारत, जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय रिफाइनरी ने की पिछले 2 माह में रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति। भारत द्वारा नेपाल को राहत सामग्री पहुंचाने से जुड़ा समाचार दैनिक जागरण ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, नेपाल का सबसे भरोसेमंद मददगार बना भारत, 4 विमानों से 68.5 टन राहत सामग्री पहुंची, सुरंग बचाव विशेषज्ञ और फोरेंसिक टीमें भी युद्ध स्तर पर जुटी। नक्स नक्सल मुक्त बस्तर को अब हथियार और विस्फोटक डंप फ्री करने में जुटी फोर्स। नारायणपुर के जंगल में राइफल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर BGL विस्फोटक का डंप